जाम पाटी धुमधाम राइट तपन नया इबी मेरो टियागो इबी सँग लाइट छ सुपपन Elders love it, so do the young. It's safe, it's playful.

यसले चाहिँ तुझे बछर आओ समझे साउ तेरे तुम्हें सबको बता रहा हूँ तेरे बारे में सबको अच्छी बातें बता रहा हूँ तेरे लिए मम्मी डैडी को मैं घर से बना रहा हूँ वजन मेरी थोड़ी घटा रहा हूँ तुझे दिन बोली पसंद है मैं हिंदी खाने चबा रहा हूँ सुनने में आया है तू लंदन में रहती है अब भी क्या अब भी

मैं भी तुझे बचा रहा हूँ, सब मुझे खाओ तेरी पूरी सपोर्ट आ रहा हूँ, तेरे बारे में सबको अच्छी बातें बता रहा हूँ, तेरे लिए मम्मी डैडी को मैं खत्म बना रहा हूँ, वजन मेरी थोड़ी घटा रहा हूँ, तुझे ब्लू बॉडी पसंद है, मैं हिंदी खाने चबा रहा हूँ, तुमने मैं आया है, तू लंदन में रहती है, अब भी क्या अब भी

0: न बोले तुम न मैंने कुछ कहा
1: कहा
0: कहा
1: कहा मगर न जाने ऐसा क्यों लगा
0: लगा
1: लगा
0: लगा के धूप में खिला है चांद दिन में रात हो गई
1: चांद की मिला।

घुमघाम राइट माझाम साथी धुमधाम राइट सपन नयाँ इजी मेरो दिया गुजीसँग लाइफ छ सुपर फन. Elders love it, so do the young. It's safe, it's playful, get the fun, go.